0: पुलिस की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है विदुषी वत्स। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली अपडेट में जब बताएंगे आपको आर्चरी से, जहां कई अच्छी खबरें आई हैं। भारत की कंपाउंड महिला और पुरुष टीमों के साथ साथ मिश्रित टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ज्योति सुरेखा वेनम, चिकिता तनिपार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने राउंड ऑफ 16 में मंगोलिया को 238-223 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 233-230 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। वहीं कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की पुरुष टीम ने कंपाउंड जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था यूएई को 235-215 और क्वार्टर फाइनल में भूटान को 235-232 से हराकर अंतिम चार में जगह बना ली है। आपको बता दें मेडल राउंड 30 सितंबर को खेले जाएंगे।
3: Absolutely, there are really encouraging updates for India from archery, where both our recurve and compound mixed teams have booked their places in the semi-final. To talk about the recurve mixed team, where Dheeraj and Anil were clinical right from the knockout stage. They began by defeating the United Arab Emirates 6-0 in the round of 16 and then produced another commanding performance in the quarter-final, beating Vietnam by 6-0. So four set points won and not a single set dropped. It was a very controlled performance from the Indian pair, who now move into the semi-finals with a real opportunity to fight for the medal. Now, India now have another mixed team through the last four, this time in compound archery. It is Chikita and Sahil first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16. They then faced Kazakhstan in the quarter-final and came through 159-154. So both Indian mixed teams, recurve as well as compound, are now semi-finalists.
2: Badminton ki baat kar lete hain dosto. Badminton se halanki kuch achhi khabar subah nahi hai. Mixed doubles ke quarter-final mein Dhru Kapila aur Tanisha Cresto ne vishv number 1 jodi Feng Yong aur Huang Doping ki jo unse muqabla tha, kadi chunauti थी। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम हालांकि 21-14 से गंवाया, लेकिन दूसरे गेम में शानदार वापसी करते हुए 21-18 से जीत दर्ज की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक लेके पहुंच गई। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में विश्व नंबर 1 जोड़ी जो चीन की जोड़ी है 21-18 से गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस तरह ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को 14-21, 21-18, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जोड़ी का एशियन गेम्स में जो अभियान था यहीं थम गया।
3: We also have some sad results from the women's doubles quarter-final, where Teresa Jolly and Gayatri Gopichand's Asian Games campaign has come to an end after they went down 18-21, 19-21 to Malaysia's world number 5 pair, Pearly Tan and Thina Muralitharan. The Indian pair did have a strong run into the quarter-finals. They had already defeated the world number 3 Japanese combination, and they also come into these games after winning historic bronze medal at the World Championships. But against the Malaysia, Teresa and Gayatri were competitive in the opening game, fought their way back after falling behind early, but Malaysia managed to regain control, particularly in the second game, and closed out the match in straight games. So disappointment for Teresa Jolly and Gayatri Gopichand.

0: विदुषी वत्स से। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला बॉक्सिंग पदक पक्का कर लिया है। अंकुश ने ताजिकिस्तान के नजरूक सलीमो को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकुश ने मुकाबले के दौरान शुरू से ही आक्रामक और नियंत्रित बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और पांचों जजों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ ही अंकुश ने एशियाई खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब सेमीफाइनल में अंकुश पंघाल के सामने बेहद कड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन फजलुद्दीन एर्केबेनोवस से खेला जाएगा।
1: And there is encouraging news coming in from the athletics track with Santosh Kumar first booking his place in the men's 400 meters hurdles final, finishing second in his heat in 49.61 seconds. And now India has added two more finalists in the women's 400 meters hurdles with Vithya Ramraj and Anu Raghavan both making it through. Vithya produced a strong run clocking 55.73 seconds to finish third overall, while Anu Raghavan was right behind her, recording 55.84 seconds and taking fourth place overall. So three Indian athletes across the men's and women's 400 meter hurdles have now made it through to their respective finals.
0: डेकाथलॉन की बात करते हैं, जहां पर डिस्कस थ्रो के बाद तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। डिस्कस थ्रो में मुश्किल प्रदर्शन करते हुए तेजस्विन शंकर ने 36.77 मीटर की दूरी तय की और 599 अंक अर्जित किए। अब उनके कुल 5,869 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। चीन के चेन शिंगुआ 5,919 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि जापान के युमा मारियामा 5,914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तेजस्विन अब पोल वॉल्ट और भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
1: And now some results coming in from Kurash. It has been a difficult outing for India today, with all four athletes who competed seeing their Asian Games campaigns come to an end. In the men's plus 90 kilogram category, Yash Kumar Trohan lost his round of 16 bout 0-10 to Tajikistan's Mirmamadov. Vishal did make it through to the quarterfinals in the same category, but his campaign ended there after a 0-5 loss to Thailand's Yeon. In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by Philippines Quilino in the round of 32. Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Azer Vened. So four Indian Kurash athletes in action today and all four have been eliminated. There are still two more Indians to watch in Kurash on September 28 and September 29.
0: Vidushi, ab lambi kood ki baat kar lete hain. Udhar Mulli Shishankar ne 7.84 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगजाओ में हुए पिछले संस्करण में रजत पदक विजेता रहे शिशंकर ने शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य भारतीय खिलाड़ियों में डेविड सोलेमन ने 7.62 मीटर की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कल यानी सोमवार को खेला जाएगा। यहीं पर एक और खबर दे देते हैं, बैडमिंटन की महिला युगल मिश्रित युगल के बाद महिला एकल में भी आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए। अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए महिला एकल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने एशियाई खेलों में अपने पदार्पण में मुकाबले में हार गई हैं। हालांकि उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 16-21, 21-14, 17-21 से हार गई है। वहीं पर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु अपना मुकाबला महिला एकल का खेल रही चेन यू फेई के खिलाफ और पहला गेम वो जीत चुकी हैं। यहां एक उम्मीद बची हुई है, क्या यहां पर पीवी सिंधु जीतकर भारत को खुशखबरी देती हैं।
1: Moving across to fencing, India's women's sabre team also saw their

0: campaign come to an end in the quarter-final. The Indian team featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin Jess and Shruti Joshi went down 35-45 to Uzbekistan. So after reaching the quarter-final stage, the Indian women's sabre team could not make it through to the semi-finals. And now let's turn to shooting, where the trap competition continues. In the women's trap event, Neeru Dhanda is currently leading the individual standings at number one after 2 days of competition. She added 48 out of 50 targets on day one. India's women trap team has also finished day two in second position in the team standings, with Ashima Alawat currently at 16th position individually. In the men's trap event, Kenan Chennai had a perfect start, hitting all 25 targets in his opening round. He then managed 22 in the next round and is currently at 11th individually. Shapat Bhardwaj at 22, with Indian men's team finishing day one in 7th position in the team standings. And a live update coming from the precision round, Indian women's team is 3rd and 25-meter pistol and the rapid round to follow.
1: जी चलते चलते आपको ये भी बता दें, महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 मीटर के बाद डिस्क्वालीफाई कर दी गई। वहीं मंजू रानी 3 घंटे 40 मिनट 17 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर ही। दोस्तों अब अगली अपडेट में आपसे मुलाकात होगी 12:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: நூற்று 3.3 மதுரை எஃப்எம் மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம். ஆகாஷ்வாணி இசைத்து

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
4: आज ही सर्च करूंगा
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखिए समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें कहीं से

0: भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की यह सुविधा बहुत आसान है। आप

अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को

बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य

टूट सकता था, लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवां बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं।

देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान

किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पॉटिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल

कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने

0: birthday at the Asian Games with action unfolding across multiple disciplines. I am Vidushi Vats and with me is Shahid Azmi, and together we bring you the latest updates. We begin with a fantastic day for Indian archery with strong results coming in across the recurve and compound team events. Let's start with recurve. In the men's recurve team quarterfinal, Dheeraj, Neeraj and Yashdeep defeated China 5-2 to book their place in the semi-finals. The women's recurve team of Ankita, Kumkum and Kirti were even more dominant, defeating Chinese Taipei 6-0 in their quarterfinal. And the mixed recurve team also made it through with Dheeraj and Kumkum defeating Vietnam 6-0. So here are the recurve semi-final lineups. The men's team event, India will face Iran. The women's team event, India will take on China. And the mixed team event, India will face Japan. But the good news from archery continues, with India also reaching the semi-finals in all three compound team events. The men's compound team will face Korea. The women's compound team will take on Korea as well, while the mixed compound team will face Thailand. That means India has now secured six team semi-final berths across recurve and compound archery, all set, scheduled for October 2nd. All in all, it has been an amazing day for Indian archery.
1: Vidushi, डेकाथलॉन में भी आह और वाह का दौर जारी है. डेकाथलॉन में स्पर्धा में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, स्पर्धाएं खेली जा रही है, उसमें तेजस्वी शंकर 8 स्पर्धाओं के बाद 6571 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. जापान के युमा मारुयामा 6855 अंक के साथ पहले, और चीन के चेन शिंगहुआ 6709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर. तेजस्वी की बात करें तो अब लॉन्ग जंप में 7.53 मीटर और हाई जंप में 2.18 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि 110 मीटर हर्डल्स में उन्होंने 14.33 सेकंड का समय निकाला, जबकि पोल वॉल्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, 4.30 मीटर की छलांग लगाकर 702 अंक हासिल किए. यहां पर उम्मीद की जा रही थी तेजस्वी शंकर शानदार कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर वो अपना चूक गए हैं. लेकिन डेकथलॉन की दो स्पर्धाएं अभी बाकी हैं. तेजस्वी की नजरें अब इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पदक की स्थिति मजबूत करने पर होगी.
0: A quick update on shooting as well, where the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Isha Singh leads the Indian challenge at this stage, finishing the precision qualification with 290 points to sit 6th. Rahi and Manu Bakara next, both on 287 points, currently placed 15th and 16th respectively. There is still more shooting action to come, so the Indian trio will be looking to build on these scores as the event progresses.
1: Badminton ki baat kar lete hain Vidushi. Badminton mein aaj भारत को 4 मुकाबले खेलने थे, चारों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही आज महिला एकल, महिला युगल, मिश्रित युगल और इसके साथ साथ बात करें तो तमाम जो मुकाबले महिला युगल के, सभी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. महिला एकल में

0: पीवी सिंधु को चीन की वर्ल्ड नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यूफेई ने 11-21, 21-18, 10-21 से हराया। वहीं उन्नति हुड्डा ने 3 बार के विश्व चैंपियन जापान के अकाने यामागुची को कड़ी टक्कर दी। उन्नति ने दूसरा गेम जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया था, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्कोर की बात करें तो उन्नति को जो स्कोर हासिल हुआ, जो स्कोर किया 16-21, 21-14 और 17-21 से वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह महिला युगल में टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को मलेशिया की पोलिटैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार मिली। जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने चीन की फेंग झोंग और डोंग पिंग के खिलाफ संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें 14-21, 21-18, 18-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलते चलते एक और खबर आपको दे देते हैं। एशियन गेम्स के जो मुकाबले चल रहे हैं, महिला भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर नवें स्थान पर रही। हरजिंदर कौर ने स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता की अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। हरजिंदर कौर इसी के साथ ही पदक की दौड़ से बाहर हो गई और नवें स्थान से उन्हें संतोष करना पड़ा। दोस्तों अगले घंटे में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हाँ उठा पटक जापान में ज़रूर जा रही है, कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी। शाम तक ज़रूर बने रहें आकाशवाणी के साथ। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आज़मी और रिदुषी वस को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विदुषी वत्स। विदुषी, जैसा कि हम पिछली अपडेट में बात कर रहे थे, भारत के जो मेडल हैं वो अभी कुछ खास नहीं, लेकिन इस घंटे की अपडेट में बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत खास मेडल आया है भारत के लिए। बताना चाहूँगा महिलाओं के जो बात करें तो अभी मुकाबले शुरू होने अनहत सिंह उतरेंगी, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ गई है। एशियाई खेलों में भारत के अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल स्क्वाश में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के एनईओ के हाथों 9-11 5-11 5-11 से शिकस्त का सामना करना पाए। स्क्वाश का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जरूर थी अभय सिंह यहाँ पर गोल्ड जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से मलेशियाई खिलाड़ी ने उन्हें लगातार

0: तीन गेमों में लगातार हराकर जीत दर्ज की, इसलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की और कई मौकों पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी। तीसरे गेम में भी उन्होंने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन एनईओ ने जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली, मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ ही एनईओ लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अनाहत सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा उम्मीदें अनाहत सिंह पर है। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंह सुवारी सुब्रमण्यम के खिलाफ उतरेंगी भिड़ेंगी। यहाँ भारतीय जरूर उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल यानी पीला तमगा है, लेकिन हाँ आज का दूसरा पदक आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दें, अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वजन वर्ग में पदक पक्का किया सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए। आज का दूसरा पदक यानी दो पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं।
1: With these two brilliant news, we can absolutely say that it is in total a very mixed day for India today. So now we take a complete update from women's specific draw, where India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. South Korea took the opening game 15-8 before winning the second 15-3 to wrap up the match in straight games. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines, and they came away with another state games victory for Philippines, winning 15-12, 15-6. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2.
0: घुड़सवारी की बात कर लेते हैं। आईसी नागोया में भारत का जो घुड़सवारी का अभियान है वो समाप्त हो गया। जी हाँ, एशियन गेम्स में जिस तरह से उम्मीद की थी, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला। हृदय छेदा 72.680 के स्कोर के साथ इंडिविजुअली ड्रेसेस फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके साथ ही जयसूद 71.490 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। हाँ, यहाँ पर एक और खबर दे दें, इंडिया वर्सेज वियतनाम। जी हाँ, भारत बना वियतनाम का जो वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा, भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। अगर बताएं पहले सेट की बात करें तो भारत ने 25-23 से वहां पर अपना जो सेट था वो जीता था। जेरेमी विनीत ने पहले सेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंक अर्जित किए थे। यहाँ पर भारत ने अब दो जो सेट है अपने नाम कर लिया। पहला सेट जैसा मैंने बताया 25-23 से, दूसरा सेट 23-18 से जीत लिया, यानी दूसरे सेट में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन किया है और देखना है कि भारत आगे किस तरह प्रदर्शन करेगा। हालांकि अब स्कोर ताज़ा अपडेट बता दें, दोनों के तीसरे सेट में 1-1 अंक बने हैं विदुषी।
1: Absolutely. Now let's move on to the surfing update of the day, where India has had mixed results in the women's and men's shortboard events. Starting with the women's competition, Kamali Murthy was in action in round 3 against Indonesia. She scored 5.93 across two waves, while her Indonesian opponent finished with 11.64, bringing Kamali's campaign to an end. Now Shanti Sugargayan also bowed out in round 3 up against Japan. Sugar finished with 5.17, while her Japanese opponent scored 14.60. So both women Indian surfers have now exited the competition after reaching round 3. Moving on to the men's event, Sivaraj Babu was in action in round 2, where he faced Iran's Khadir. Sivaraj produced a strong score of 8.96, comfortably ahead of Khadir's 3.60. And we also mentioned Kishore, who is already qualified to round 3. So both Kishore and Sivaraj are now through to round 3. But that stage is yet to take place and is scheduled for tomorrow.
0: ये बताते हुए श्रोताओं की भारत के 4 गोल्ड, 13 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज समेत 31 पदक हो गए। अगले एक घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: இது 103.3 மதுரை எஃப்எம் ரெயின்போ மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 நேர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். ஒரு மணி 36 நிமிடம் 10 நொடி கடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இனிய பகல் வேளையில்.

0: फाइनल में भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमुआ को 5-0 से हरा दिया है। परवीन ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक और प्रभावी बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया। पहले राउंड में उन्होंने 4-1 की बढ़त बनाई। इसके बाद दूसरे राउंड में प्रवीण ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए सभी जजों से 5-0 का फैसला अपने पक्ष में कराया। तीसरे और अंतिम राउंड में भी प्रवीण ने अपना दबदबा कायम रखा। 5-0 के स्कोर के राउंड से जो 5-0 का स्कोर था उसके साथ अपने पक्ष में किया। इस तरह तीनों राउंड में जो तीनों राउंड का प्रदर्शन था उसके आधार पर जजों के सर्वसम्मत फैसले से प्रवीण ने 5-0 से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ प्रवीण ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और सुनिश्चित हो गया है। आपको यह भी बता दें कि आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में पदक पक्का किया था।
1: Didn't we say this is a day of twists and turns and welcoming of medals? So as we continue this roller coaster of an update, it is important to remind you of another one of the brightest stories from today's action. That is, alongside the silver medals coming in from squash and other sports, the Indian archery contingent has given us plenty to celebrate as well, with strong performances across both recurve and compound. If we take a look at how Indian archers have made it a really encouraging day, is when in recurve men's team defeated China and booked their place in semi-finals. The women's team defeated Chinese Taipei and did the same. The mixed recurve team beating Vietnam after an earlier victory over the UAE, which means three Indian recurve teams are now through to the semi-finals. But the good news still does not stop there, because the compound teams have also reached the semi-finals like that. And we now have the semi-finals match that we look up to on September 30th for compound and on October 2nd for recurve events. So after the excitement and silver medals from squash, this is another really bright spot for India today.
0: बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, जहां भारत को जीत हासिल हुई। एशियाई खेलों के पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी के मुकाबलों में भारत जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसको कौन देखते हुए आज का जो मुकाबला था बेहद खास था। वियतनाम को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और तीनों सेट अपने नाम कर लिए। पहले सेट में भारतीय खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के बाद 25-23 से बाजी मारी। दूसरे सेट में भी भारत ने अच्छी लय बरकरार रखी, 25-21 से जीत दर्ज की। और तीसरे सेट में भारत ने शुरुआत से जो बढ़त बनाए रखी थी उसे जारी रखी और 25-20 से सेट अपने नाम कर 3-0 से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में हांगकांग चीन का सामना करेगी। यह मैच 28 सितंबर यानी कल खेला जाएगा। खबरें और हैं, लगातार मुकाबले जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस घंटे की अपडेट में इतना ही। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் கேட்டீர்கள். தொடர்ந்து கேட்கலாம்.
4: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
5: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
6: ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 கவிதை அரங்கம் கேட்கலாம் நேயர்களே. இது அவளின் காதல் கதை. கல்யாணத்தில் நிறைவடைந்ததா அப்படிங்கிறதா தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. பார்வைக்குத்தானே பிரிவு, நேசத்திற்கு அப்படியேதும் இல்லை. பிரிவும் எதிர்ப்பும் உண்மை காதல் சந்தித்துத்தான் தீர வேண்டும் இல்லையா.

0: क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के नवखोर खादिमों को 5-0 से हरा दिया। परवीन ने पहले राउंड में 4-1 की बढ़त हासिल की, उसके बाद परवीन ने अगले दोनों राउंड 5-0 से जीतकर तीनों राउंड के प्रदर्शन के आधार पर जजों ने सर्वसम्मत से परवीन को 5-0 के से विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के साथ परवीन ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और भी पक्का उन्होंने कर लिया। आपको यह भी बता दें, इससे पहले आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में एक और पदक पक्का किया था।
1: Now that we have looked as to all the matches that have taken place, all the disciplines that have happened, it's important to look as to what we have in the next few hours. Right now, right at this moment, the Indian women's hockey team is taking on Singapore with their Pool B match getting underway. Also in athletics, the women's long jump final is getting underway right now with Shailee Singh and Nancy Sojourn in action. Later today at 3:55, we have Harita and Unnati line up in the women's 200 meter final, followed at 4:05 by Animesh Kujur in the men's 200 meter final. Furthermore, we also have men's high jump final where Sarvesh and J. Adarsh Ram will be looking to challenge for the medals. And later, we also have women's 100 meter hurdles final where Nandini will be competing for us.
0: जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुकाबले बाकी हैं और यहाँ पर भारत जीतता है तो यकीनन उसके जो पदक का जो तालिका है उसमें इजाफा होगा और भारत की जो अभी रैंकिंग उसमें भी इजाफा होगा। फिलहाल अगर बता दें जो पदक तालिका चल रही है उसमें चीन सबसे ऊपर है, 114 गोल्ड और इसके अलावा 44 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज समेत 191 पदक के साथ सबसे ऊपर है। जापान दूसरे स्थान पर 33 स्वर्ण, 54 रजत और 55 कांस्य समेत 142 पदक जीते हैं, जबकि कोरिया के नाम 18 स्वर्ण, 22 रजत और 38 कांस्य समेत 78 पदक। वहीं भारत 12वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण, 14 रजत, 14 कांस्य समेत 32 पदक भारत के खाते में यानी भारत की झोली में आ चुके हैं। और क्या अगले एक घंटे में होता है बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है, घंटे बाद 4:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले घंटे बाद मुलाकात होगी। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: நூற்று 103.3 மதுரை எஃப்எம் ரெயின்போ மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தற்போதைய நிலவரம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். நேரம் பிற்பகல் 3:35 40 நொடி.
4: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
5: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
4: ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3, ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9. இன்று இரவு 7 மணிக்கு ஃபார்ம் டு சிட்டி விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி.
6: இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம்.
3: மூன்று 3:36 10 நொடி கடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இனிய பிற்பகல் வேளை. நாம் கேட்டு ரசிக்கின்றோம் 103.3 மதுரை பண்பலை மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9. இது மெல்ல வரும் பாட்டு. நிகழ்ச்சியில் தொடரும் பாடல் உன்னிமேனன் எஸ் ஜானகி பாடியது, ஜோடி என்ற படத்திற்காக.

0: वसंत को।
1: में जो पदक आया, जी हाँ, एशियन गेम 2026 में एथलेटिक्स से भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। महिला 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। हरिता ने पूरे फाइनल में दमदार चुनौती पेश की और पोडियम पर जगह बनाकर भारत की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की दूसरी धाविका उन्नति बोलन भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। इस तरह महिला 100 मीटर में भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया और एथलेटिक्स में देश की पदक की संख्या में इजाफा हुआ। जिस तरह से हरिता भद्रा ने दिल्ली में इंडिया ओपन में भी प्रदर्शन किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बातचीत में आकाशवाणी से बताया था, मैं 23 से ऊपर अगर एशियन गेम्स में करूंगी तो यकीनन पोडियम फिनिश करूंगी, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया।
2: And what a moment for India, what a moment for India. Another medal coming in athletics, and this is turning into a day where the Indian contingent is really showing its strength across disciplines. We have already seen the silver medals in squash from Abhay Singh and Anahat Singh, and now Harita adds a bronze in the women's 200 meters. The medals are coming, the performances are coming, and importantly, the momentum is building. And speaking of powerful performances, the medal hopes are right up there in athletics as well, because we are watching live the women's long jump final right now, and India has two strong contenders in the field. Ansi Sojan dominating it right now, currently sitting at the top of the standings with the best jump of 6.49 meters. Her first attempt was 6.49, the second one invalid, the third again came at 6.46, and despite that, Ansi remains at the top. And other contender Shali Singh is currently in fourth position with 6.34 meters. Her first attempt was 6.25. She improved to 6.34 on her second and has matched that distance again with her third attempt. So there is plenty to watch, plenty to cheer for, and plenty still to come.
1: एशियन गेम्स में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। डेकाथलॉन की बात करेंगे, पुरुषों की स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में भारत के तेजस्विन शंकर ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। तेजस्विन ने अपने तीन प्रयासों में, जो पहला प्रयास था उनका 46.29, दूसरा प्रयास था 53.37 जो सबसे बेस्ट उनका प्रयास था, इसके बाद हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने

0: 51.8 मीटर का थ्रो किया, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 53.37 मीटर रहा है। जेवलिन थ्रो के बाद डेकथलॉन में तेज अश्विन शंकर की चुनौती बताएं तो अंतिम इवेंट 1500 मीटर दौड़ जो वो अभी खेली जा रही है, वहां डेकथलॉन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन के सभी 10 स्पर्धाओं में जो हासिल किए अंकों के आधार पर किया जाता है, वहां फैसला होगा कौन पोडियम पर पहले स्थान पर रहता है, कौन दूसरे, कौन तीसरे। हालांकि अभी तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
1: And while we continue to follow the result coming in from athletics, there is an update from the men's 200 meters final as well. Animesh Kudur finished fifth, clocking 20.80 seconds in the final and missing the podium. Now let's move on to another men's event happening live right now. That is the men's high jump final with Sarvesh Kushare and Jyoti Shankar representing India. Jyoti Shankar has cleared 2 meters and is currently sitting in sixth position, while Sarvesh remains in contention as the competition continues. Another medal opportunity is very much in focus as the athletic action continues.
0: एक और मेडल इवेंट की बात करते हैं जहां भारत को होप है, भारत को उम्मीद है, यहां पर पदक जरूर आएगा, वो है हॉकी। और हॉकी में महिला हॉकी टीम जिस तरह से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है, उसी का एक आधार यहां भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर के खिलाफ भारतीय महिला टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही है, 5-0 की एक भारी भरकम लीड ले चुकी, तीसरा जो क्वार्टर है वो जारी है। आपको यह भी बता दें भारत ने जो 5 गोल स्कोर किए वो दूसरे क्वार्टर में गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 5 गोल स्कोर किया। हालांकि तीसरा क्वार्टर जो है अभी जारी है, वहां पर कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह से मजबूती से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल कर रही है, यकीनी तौर पर माना जा रहा है यह भी एक टीम साबित होगी जो पदक के यानी पोडियम पर पहले दूसरे स्थान पर दिखाई दे सकती है।
1: एंड विद दीज अपडेट्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ब्रिंगिंग इन मोर एथलेटिक मैचेस एंड लाइव अपडेट्स टू यू आफ्टर एन आवर। एंड विद दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் அண்மை நிலவரம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம்.
4: மதுரை FM 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் FM 100.9
5: FM ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
6: எடியே எடியே

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Welcome, and it's time to bring you all the latest from Asian Games. I am Vidushi Vats here with Mohammed Shahid Azmi, bringing you all the major developments from the last hour and a half. And what a last 90 minutes it has been. Twists, turns, changing positions, dramatic finishes, and now two more silver medals for India. Yes, after the two silver medals we already brought you from squash, India has added two more silver medals, both from athletics. And we begin with a sensational performance in the women's long jump final. Ansi Sojan has done it. Silver medal for India. Ansi produced a stunning 6.53 meter jump with her final attempt to secure second place, and what a competition she had. She was the athlete to beat for much of the final, sitting right at the top of the standings and showing remarkable consistency and control. And then when it mattered the most, she delivered a massive 6.53 meters with a final attempt to bring home the silver for India. And that is India's third silver medal of the day, following the silver medal performances from Abhay Singh and Anahat Singh in squash. But the silver medal celebrations don't stop there. Another silver for India, this time in the men's high jump. Sarvesh Koshari has done it. A brilliant performance from the Indian high jumper, who dominated the competition for a major part of the final and spent much of the contest right at the top of the standings, eventually finishing second with a clearance of 2.25 meters. Silver for Sarvesh Koshari, silver for India.
2: जी बिल्कुल, कई पदक बिल्कुल पास आके चले गए, गोल्ड करीब आते आते चला गया, जैसे कहें कि होठों तक प्याला आके छलक गया। बिल्कुल एनसी और सर्वेश यहाँ गोल्ड जीत सकते थे, मामूली अंतर से उनसे गोल्ड छलक गया। बात करेंगे एथलेटिक्स में, जिस तरह कामयाबी मिल रही, 13 अब तक पदक एथलेटिक्स से भारत को मिल चुके हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए इस एशियन गेम्स में, अगर आज के एक और पदक की बात कर लेते हैं, महिला 100 मीटर दौड़ की बात करें तो भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहते हुए जापान के मारियामान ने वहीं पर 8,123 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के शिंगहुआ ने 8,012 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें 2022 में रजत पदक जीतने वाले यह एशियाई खेलों में यहाँ बता दें तो डेक्थलॉन में उनका लगातार दूसरा पदक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजस्विन अपना जो पदक का रंग बदलने से चूक गए, लेकिन हाँ लगातार दूसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जरूर जीता है।
1: Absolutely. Now another big medal moment for India in the women's 3000 meter steeplechase. Parul Chaudhary has done it, bronze for India. Parul finished third to secure a brilliant podium finish with Ankita finishing fourth. What a performance from Parul, holding her ground in a grueling final and bringing another athletics medal home for India.
2: बिल्कुल, पारुल ने एशियन गेम्स में जाने से पहले हमसे बातचीत में भी कहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूंगी, ऐसा ही कर उन्होंने दिखाया भी, अपना बेस्ट किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं विदुषी, एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग ने भी कई कमाल किए हैं। रिंग में भारत के लिए शानदार खबर है, भारतीय मुक्केबाज आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया 3 पदक पक्के कर लिए हैं, अंकुश पंघाल, प्रवीण और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आज मुक्केबाजी के अंतिम मुकाबले का परिणाम बता देते हैं, पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सिथपेक के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र ने यह मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम कर लिया, यानी बेहद जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर लिया है।
1: Absolutely, as we said, this was some very spectacular last 90 minutes. Now moving across some more athletics results from the events that have taken place today in the men's 800 meters.

0: Mohammad Afzal finished third in round one, heat two, clocking 1:47.37 and advanced to the final. In heat three, Krishan Kumar also finished third, recording a timing of 1:50.338, moving to the women's 100 meters hurdles final. Nandini finished sixth for India, clocking 13.45. There was no medal for India in this event.
1: विदुषी चलते चलते हॉकी की खबर देते एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अगले एक घंटे में अब क्या घटेगा जरूर आज की अंतिम अपडेट में 7:30 में बताएंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: இதுவரை நாம் கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் அண்மை நிகழ்வுகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்டோம் நேயர்களே.
4: ஆகாஷ்வாணி இஸ்

0: शाम जरूर ढल गई है, लेकिन भारतीय जो एथलीट है उनका जज्बा कहां कम होने वाला। शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं एशियन गेम 2026 में, और इसकी ताजा अपडेट और आज की अंतिम अपडेट के साथ मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है मेरे दोस्त विदुषी वत्स। विदुषी, आज देखा जाए भारत ने कमाल किया है, 7 पदक पक्के जीते हैं और 3 पदक पक्के किए, यानी 7 और 3 10 पदक आज के दिन से भारत की झोली में आना ही आना है। बात पहले करते हैं आज के अंतिम मुकाबले के एथलेटिक्स के, जहां भारत ने 4x400 मीटर महिला रिले के फाइनल में जगह बना ली है। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत की शानदार प्रदर्शन भारत का देखने को मिला फाइनल में, और इसके साथ जगह बना ली। महिलाओं ने दूसरे हीट में 43.65 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया, जो उनका सीजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा बात करें तो कुल मिलाकर भारत तीसरे स्थान पर और चीन तथा थाईलैंड के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में भारत के मोहम्मद अफजल ने फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने 1:47.36 सेकंड का समय निकालकर नॉन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्थान के जरिए फाइनल में जगह बनाई। वहीं कृष्ण कुमार 1:50.38 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए।
1: And now, as we come to the final update of the day, let's take a moment to look at what has been an extraordinary day for India at the Asian Games. India currently stands at 12th position on the medal table with 37 medals, 4 gold, 16 silver and 17 bronze. And today, a major part of that medal haul has come through 4 remarkable silver medal performances across 2 different disciplines. 2 silvers from squash, 2 silvers from athletics, 4 athletes who gave India 4 moments to remember.
0: जी, अगर बताना चाहूं मैं आपको, भारत ने जो 3 कांस्य पदक पक्के किए हैं और 3 जो पदक हैं वो भी आने वाले हैं, उसके बारे में बताऊं तो जो 3 कांस्य पदक भारत के खाते में है, तेजस्वी शंकर ने पुरुषों के डेकथलॉन में कांस्य पदक जीता। जी हां, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेस में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं जो 3 पदक पक्के हुए उसके बारे में बता दूं, पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश ने बॉक्सिंग में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को हराकर पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं के 65 किलोग्राम में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां परवीन ने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को हराकर पदक सुनिश्चित किया। वहीं पुरुषों की 90 प्लस किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नरेंद्र ने थाईलैंड के अतपोंग सेतपेक को हराकर पदक पक्का कर लिया है।
1: Remarkable medals, remarkable stories, another unforgettable day for India at the Asian Games. But it's also important that as we wrap up today what has been that remarkable day, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits us at the Asian Games. There is plenty lined up across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. We begin with archery, where the compound individual eliminations will be in focus. In the men's event, we'll have Ganesh Maniratnam in action, while the women's compound individual eliminations will feature Chikita and Jyoti Surekha Venom. And after the fantastic performances we have witnessed in athletics today, there will certainly be plenty of attention on the track and field events tomorrow. So the women's discus throw final, we will see Seema and Sandhya Yadav in action after the medals and strong performances India has witnessed in athletics today. All eyes will be on how our throwers perform tomorrow.
0: जी बिल्कुल, कुछ एथलेटिक्स के जो कल मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। अगर बात करें तो अनु राघवन और विथ्या रामराज 400 मीटर हर्डल्स में जहां उतरेंगे, वहीं संतोष कुमार लालिमसान 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में उतरेंगे। वहीं अविनाश साबले, इसके अलावा बात करें तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में पदक के लिए उतरेंगे। वहीं मुरली शिवशंकर और डेविड सुलेमन वो भी उतरेंगे पुरुष लॉन्ग जंप में, जबकि यूनुष शाह और गुलवीर सिंह उतरेंगे 1500 मीटर के फाइनल में। वहीं अगर बात करें यशवीर सिंह और रोहित यादव पुरुषों की जेवलिन थ्रो में उतरेंगे, जबकि बात करें गौतम जयराम महिलाओं के 400 मीटर राउंड एक में उतरेंगे, जबकि पूजा महिलाओं के 800 मीटर। वहीं सीमा और पारुल चौधरी भारत के लिए उतरेंगी 5000 मीटर फाइनल मुकाबले में, और यहीं पर भारत 4x400 मीटर रिले के राउंड मुकाबले खेलता हुआ नजर आएगा। यानी कल भी भारत की झोली में पदकों की संख्या बढ़ने वाली है।
1: Moving to boxing, there are some highly anticipated quarterfinals on the cards. In the women's 75 kg quarterfinal, Lovlina will face Korea's opponent. In the women's 60 kg quarterfinal, Priya will take on Tajikistan, while men's 90 kg quarterfinal, Kapil

0: will face Korea's opponent. And then there will be cricket as well, with India taking on Afghanistan in men's quarter-final number 2 in hockey men's team pool A against Bangladesh.
1: जी बिल्कुल, कल देखेंगे किस तरह से भारत आगे बढ़ता है, लेकिन फिलहाल भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, ये बताते हुए कि कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे विशेष कार्यक्रम सुनना मत न भूलिएगा, जो ओलंपिक, जो भारत खेल रहा है, जिस तरह से एशियन गेम्स में प्रदर्शन कर रहा है, उस पर विशेष रिपोर्ट आप 10 बजे सुन सकते हैं आज रात में। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
2: नमस्कार, द आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी वो सीरीज है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से

0: ऐसे व्यक्तित्वों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, हम सबके लिए रोल मॉडल भी हैं और उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट श्रीमती कुलजीत कौर जी, उनका करते हैं बहुत बहुत स्वागत। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम
1: बहुत
0: में।
1: बहुत शुक्रिया तपस्या, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे लफ्ज मेरे लिए बोलने के लिए।
0: नहीं नहीं मैम, सच में
1: सो मच।
0: आप, मुझे मालूम है जब मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई तो इतना कुछ आपके बारे में बात करने के लिए है, जो आपकी लाइफ जर्नी है, जो आपका सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो बतौर टीचर लेक्चरर हो और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट के रूप में, तो बहुत सी बातें आपसे करनी है। लेकिन शुरुआत अगर मैम हम इस तरह से करें कि फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मोटे तौर पर क्या कहेंगे सबसे पहले?
1: देखो, औरतों की जो हालत, पार्टीशन से अगर स्टार्ट करें और आज के दिन में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क है। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है सोशल एटीट्यूड में औरतों की तरफ, जैसे हम देखते हैं कि देख के आदमी हैरान रह जाता है। हर एक सरकार ने जो है औरतों को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किए हैं, बड़े रूल्स भी पास किए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिसके कारण इनका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर बहुत है और समाज के ऊपर भी बहुत है।
0: जी ये बहुत अच्छी बात आपने मैम बोली कि कॉमन मासेस में जब खास तौर से औरतों की हम बात करते हैं तो एक होता है कि जो हमारे गांव में रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स का आना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, हमें याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात न केवल कही थी मैम, ये भी कहा था कि कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा हुआ नहीं होगा जो यहाँ से टॉयलेट की बात करेगा,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: शौच की बात करेगा, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट इशू था मैम, क्या कहेंगे आप?
1: नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप था जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए लिया, और वाकई उनकी बात से बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी लीडर किसी कंट्री का ऐसे फोरम से खड़े होकर टॉयलेट्स की बात नहीं करेगा। पर उन्होंने ये सोचा कि ज़मीन पर एट द ग्रास रूट लेवल औरतों की ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। मुझे भी याद है कि पंजाब में कई बार शाम के टाइम आप देखो तो औरतें जो थी वो पर्दा करके अपना जो है टॉयलेट्स के लिए गांव में, फसलों में, फार्म हाउसेस में वहां पर आया करती थी, और कई बार इतना बुरा लगता था कि उनको घूंघट निकालने पड़ते थे, और ट्रक्स वगैरह दूर से आते थे तो ट्रक्स की लाइट उनके ऊपर जाती थी, दे यूज टू फील सो एम्बेरस्ड, उनको बहुत बुरा लगता था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा और इसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, पूरे देश में ये अवेयरनेस क्रिएट करी कि लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट होने जरूरी हैं, बनवाए भी उन्होंने, पर ये जो अवेयरनेस आ गई, लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरतों की इज्जत के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप आज देखिए, हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए, जगह जगह औरतों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं, जिससे औरतों को, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, जिससे औरतों को बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है और वो सोचती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट के बारे में, इज्जत के बारे में इतने ऊपर लेवल से, प्रधानमंत्री के लेवल से किसी ने उसके बारे में सोचा है, तो इसके लिए औरतें काफी शुक्रमंद भी हैं, थैंक्स भी करती हैं।
0: जी जी मैम, सोचा भी था, उसके लिए बाकायदा फंड्स एलोकेट किए गए और हर घर में जो नए घर बने उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया कि सबके लिए अलग से टॉयलेट जरूरी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इट्स नॉट ओनली अबाउट मैम टॉयलेट एंड सैनिटेशन, उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते थे महिलाओं के साथ में दिन ढलने के बाद में, उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है और बहुत महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत आशीर्वाद और दुआएं भी दी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से किया है, क्योंकि ये औरतों के बारे में जैसे मैंने कहा कि इतने सालों से, 70 सालों से किसी ने नहीं सोचा, ये खाली उसकी हेल्थ की सेफ्टी नहीं थी, ये औरत की एम्पावरमेंट थी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, वो सबके लिए बहुत जरूरी था कि औरत जो पर्दा चाहती है वो अपने प्राइवेसी है, क्योंकि हर एक इंसान की प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करने से, उस लिए स्पेशल फंडिंग करने और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि घरों में औरतों के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस के साथ लोगों में बहुत बदलाव आया, जिससे औरतों की डिग्निटी जो है उनको मिली, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, सोशली ऑल्सो लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरत की इज्जत भी, प्राइवेसी भी है, जिसकी हमें इज्जत करनी है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, और उससे क्या होता था कि जब भी यंग गर्ल्स रात के टाइम, शाम के टाइम वो अपने आप को रिलीव करने के लिए जाया करती थी खेतों में, तो कई बार जो है वो फिजिकल असॉल्ट भी हो जाते थे, रेप केसेस भी हो जाया करते थे,

0: अंधेरे में कुछ समझ नहीं आती थी, पर इस उस स्टेप स्टेप से औरत की डिग्निटी तो हुई, प्राइवेसी भी हुई, औरत की सिक्योरिटी भी हुई इसके कारण।
1: जी,
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मैम, मेंटल अगर आप इसकी बात करें तो कितना रिलैक्सेशन है कि अब आपको जंगल में नहीं जाना, जहाँ पे स्नेक्स निकल आते थे, बहुत सारे एनिमल्स आसपास होते थे खेतों में और नाउल। इसमें हम थोड़ा सा इसको और हम और आगे लेके चलें तो सैनिटरी पैड्स को लेके भी कभी भी स्कूल्स में बच्चियां जो है घर में अपने पेरेंट्स स्पेशली मदर के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाती थी, बट जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, स्कूल्स में अवेलेबल होने लगे सब चीज़ें, तो उनको उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजेज क्या है, वो भी समझ में आया और उनकी अपनी हाइजीन को लेकर बहुत चेंजेस उसमें आए। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं और युवा भारत की बात करते हैं, उसमें 50% अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड की बात होती है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप उसमें अगर हम देखें तो।
0: तपस्या जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि इसकी जो रिपरकशन, इसका इफेक्ट लड़कियों की जिंदगी पर बहुत पड़ता था। जैसे ही उनके पीरियड्स आने शुरू होते थे, महीने आने शुरू होते थे, तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया जाता था। ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि अब लड़कियों के सेपरेट टॉयलेट हुए, अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम वो प्राइवेटली जाके अपने आप की जो सफाई है बॉडी की उसको मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, ये जो उनको सैनिटरी पैड्स मिलने शुरू हो गए, उससे उनको बड़ा कंफर्ट हो गया। पहले क्या था कि सैनिटरी पैड्स इतनी ओपनली ना तो बाजार में मिलते थे, ना कोई इसकी बात करता था। ये चीज लड़कियां जब भी थोड़ी सी इस हालात में, इस सिचुएशन में आती थी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो लड़कियों को ऐसे लगता था कि जैसे कोई वो पाप कर रही है, कोई बुरा कार्य करें, तो ये सारी कदमों से उनको बड़ा कंफर्ट फील हुआ है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है। जब लड़कियां एडोलेसेंट होती हैं, बड़ी होती हैं, युवा होती हैं, तो पीरियड्स आने ये नेचुरल है, उसको संभालने के लिए उनको सैनिटरी पैड्स की जरूरत है। अभी बच्चियों को स्कूल में भी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं और उसकी वेंडिंग मशीन्स भी आ रही हैं। मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे उन्होंने लड़कियों के लिए जगह जगह वेंडिंग मशीन्स, उन्होंने छोटे छोटे जो सड़कों पर ढाबे हैं वहां पर भी वेंडिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं, ताकि लड़कियां आराम से जाके बाजार में अगर वो हिचकिचाती हैं सैनिटरी पैड्स के लिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वेंडिंग मशीन से जाके वो सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं। अब उसके ऊपर खुल के भी बात होती है। हम भी जब ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं, लड़कियों के साथ बात करते हैं, एडोलेसेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भी हम उनको खुल के फिर बताते हैं, लड़कियां इसके बारे में झिझकती नहीं है, सवाल भी पूछती हैं और कंफर्टेबल भी फील करती हैं। तो ये बड़े ही अच्छे स्टेप हैं औरत को एम्पावर करने के लिए और औरत की डिग्निटी के लिए। इससे औरतों की जो इज्जत है वो समाज में क्या उनकी अपनी नजरों में भी बढ़ती है। अब ये दोनों कनेक्टेड स्टेप हो गए, टॉयलेट भी हो गया, सैनिटरी पैड्स भी हो गए, प्राइवेसी हो गई, डिग्निटी भी हो गई। अब उनको ये हम समझाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब उन्होंने मदर्स बननी है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। तो इससे लड़कियों की नॉलेज भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और इज्जत बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
1: और मैम, वो वोकल हो गए हैं सब लोग, तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा भी, फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ अगर हम मेन फोक की बात करें तो उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या थोड़ा सा एक ईजी चीजें हो रही है डिस्कस करने के लिहाज से, ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि ऐसे होता है, जो बात आप खुल के करोगे तो वो कॉमन कम्युनिकेशन में आ जाती है। जिस बात को आप कितना छिपाते हो, उतनी बात के लिए आपको लगता है पता है ये गलत बात है, इसको नहीं बोलना। अब ओपनली बोलने लग गए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में, तो ऐसे लगता है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट बॉडी में है।
1: मैम, स्कीम्स की बात चल निकली है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इसमें अभी आपने बात की कि स्कूल्स में बच्चों को अवेलेबल हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, हमारे आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, बहुत जगहों से फिल्म्स भी बन रही है, आपने खुद कहा। इसमें मैम, खासतौर से बेटियों की पढ़ाई की जब बात आती है तो ये कड़ियां कहीं जुड़ती हैं, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं।
0: मैंने आपको ये बोला ना कि जब भी बच्चों को लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती थी तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी। आप अगर अपना पुराना निकाल के देखिए जो आपका डाटा है तो आपको उससे पता चलेगा कि ज्यादा लड़कियां जो है वो सातवीं छठवीं क्लास तक पढ़ती थी, जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती थी मां बाप उनको घर बिठा लेते थे। तो अब जो है उनको जब भी अवेयरनेस हो गई है, सोसाइटी उसमें ओपन

0: ओपनली बात करती है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, फैसिलिटीज उनको मिल रही है उसके लिए, तो वो ओपनली जो है वो स्कूल में एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं और आगे अपनी पढ़ाई भी आगे. ये बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक अब सबको पता है, नेचुरल प्रोसेस है और उसके लिए स्कूल वाले भी हेल्प कर रहे हैं और उसकी सोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ गई है. जगह जगह जैसे मैंने कहा वेंडिंग मशीन्स भी लग गई हैं.
1: जी, इसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी, बताएं कि ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम थी, ये तो वो एंगल तो हुआ, लेकिन इसमें अब लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन लेके सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं, करियर बना रही हैं अच्छे से, तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सिर्फ बेटे ही हमारा सहारा नहीं, बेटियां भी हमारा सहारा हो सकती हैं. तो जो पहले बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था या पैदा होने के साथ ही, उसमें भी जो परसेप्शन है, माइंडसेट है, आपको लगता है उसमें भी चेंज आया है?
0: बहुत ज़्यादा चेंज आया है. जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आज से 50 साल पहले की आप बात करें और आज की बात करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. हरियाणा में हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया. वहाँ की औरतें जब भी पहली दफ़ा हम लोग गए तो उन्होंने इतने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जाकर उनके साथ जब मिंगली करी, उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो एक साल के बाद जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन लेडीज ने स्टेज पर डांस किया.
1: क्या बात है.
0: सो इससे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि औरतों में कितनी एम्पावरमेंट आ गई है. वो इसलिए आ गई है क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट का भी उनको बहुत सहारा है, बड़ी सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स बन रही हैं जिससे उनको पता चलता है कि हमारे लिए सरकार कितना काम कर रही है. वो औरतों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है और उसके कारण लड़कियों की एजुकेशन फर्दर डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है. अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग थी चेन्नई में, तो वहां पर गवर्नर मिस्टर रवि आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो IIT में गए वहां पर सेरेमनी के लिए, तो फ्रंट रो में सब लड़कियां बैठी हुई थी, देवर गोल्ड मेडलिस्ट. सो हमें इतनी खुशी हुई कि लड़कियां देखो कितना आगे बढ़ रही हैं. और पेरेंट्स का आगे जो होता था एकदम माइंड सेट के लड़की पैदा हुई तो दुखी हो गए, बहू को घर से निकाल दिया. अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स को ये प्राइड फील होता है कि मेरी लड़की कितनी लायक है, मेरी लड़की कितना अचीव कर रही है. इसलिए जो वो माइंड सेट था जो जेंट्स का, पेरेंट्स का, इन लॉज का, उसमें बहुत बड़ी चेंज आई है, जिसका जो मैं कहती हूँ कि श्रेय सरकार को भी जाता है. एक तो ओपनली उन्होंने इसके बारे में बात करनी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये स्कीम स्टार्ट करी, लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट कर दिए, स्कॉलरशिप्स करे, फ्री यूनिफॉर्म्स करी, फ्री बुक्स करी, तो पेरेंट्स के ऊपर अब कोई भी वैसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है. और लड़कियां जितनी पढ़ाई, देखो स्टैंड में कितने परसेंट इन्होंने सीट्स लड़कियों के लिए बढ़ा दी, तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, पायलट्स बन रही हैं, अब तो आर्मी में भी लड़कियों की जो
1: वो
0: कर दी है इतने. अब रिसेंटली एक फ्लाइट चली जिसमें सारी लड़कियां ही पायलट्स थी और वो ड्यूटी पर थी, तो दैट शोज के कितनी चेंज आ चुकी है, लड़कियों में कितनी एम्पावरमेंट हो गई है. एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि हम आदमियों से किसी तरह से भी कम नहीं है. तो चेंज तो बहुत है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि जो हमने जो देखा अपने टाइम और अब जो चेंज है एजुकेशन में भी, अब लड़कियों को और कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वी आर अनवांटेड, अब ऐसा नहीं है. अब तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारी ओल्ड एज में हमारी लड़कियां जो है वो हमें लुक आफ्टर कर सकती हैं. अब हमारा एक केस था, उससे मैं किसी से बात कर रही थी, शी इज द ओनली डॉटर. उसने कहा कि मेरी शादी की ये कंडीशन थी कि आई विल लुक आफ्टर माई हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड ही शुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स. तो कहने लगी एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इन-लॉज हैं, फर्स्ट फ्लोर में मेरे पेरेंट्स हैं, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है. पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करा और इन-लॉज ने भी करा कि डॉटर का भी फर्ज है अपने पेरेंट्स की केयर करना. सो इसलिए सोशल चेंज तो बहुत अच्छे से आ रही है जो कि लड़कियों के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में आ रही है, और हम इसको वेलकम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
0: सकता।
1: जी, आप बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की मैम, तो अवेयरनेस भी आ रही है, लड़कियां प्रूव भी कर रही हैं और चीजें सब स्टैब्लिश भी हो रही हैं सोसाइटी में। इसमें अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम देखें तो बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं। मैं फिर से एक बार अगर बात करती हूँ ग्रामीण जो महिलाएं रूरल एरियाज में जो हैं, तो उसमें उज्ज्वला योजना मैम, फिर मैं कहूँ कि जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोची वो शायद ही किसी ने सोची हो कि धुएं से उनको कितनी दिक्कत होती है और कितनी उनको चूल्हा

0: चलान से पहले तैयारी करनी पड़ती है और मुश्किल होती थी, क्या कहेंगे मैम इसमें?
1: नहीं, जो भी स्कीम्स अब आपने टॉयलेट से स्टार्ट करा
0: जी,
1: आपने, उसके बाद ने ये फ्री पैड्स की बात करी, सारी चीज जो है औरत की अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं। जब भी वो कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, वो जो सारा धुआं उनके अंदर जाता था, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन वो सफर करती थी अस्थमा, अस्थमा की उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जलाने का वो सारा धुआं उनके अंदर जाता था जो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता था। अब ये जो सारी स्कीम्स, अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो औरत की जहां डिग्निटी भी हुई, औरत जो है वहां इंडिपेंडेंट भी हुई। अब देखो उज्ज्वला में गैस आ गई तो औरत किचन में से कितना फ्री टाइम उसको मिलता है, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, हर एक स्टेप का इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर कितना हो रहा है। अगर आपकी लड़कियां हेल्दी होंगी, अगर आपकी वुमेन हेल्दी होंगी, फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी सोच का रिजल्ट है कि औरतों को इतना एम्पावर कर दिया गया, औरतों की पोजिशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई, तभी तो लड़कियां आज इतने कॉन्फिडेंस से चलती हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं, काम करती हैं।

0: प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जलाने का वो सारा धुआं उनके अंदर जाता था जो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता था. अब ये जो सारी स्कीम्स अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत की जहां डिग्निटी भी हुई, औरत जो है वहां इंडिपेंडेंट भी हुई. अब देखो उज्ज्वला में गैस आ गई तो औरत किचन में से कितना फ्री टाइम उसको मिलता है, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हर एक स्टेप का इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर कितना हो रहा है. अगर आपकी लड़कियां हेल्दी होंगी, अगर आपकी वुमेन हेल्दी होंगी, फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी. तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी सोच का रिजल्ट है कि औरतों को इतना एम्पावर कर दिया गया, औरतों की पोजिशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई, तभी तो लड़कियां आज इतने कॉन्फिडेंस से चलती हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं, काम करती हैं. एवरीवेयर यू कैन सी द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो कितने सेफ हैंड्स में है. उसके बावजूद भी सरकार ने इतनी स्कीम्स और भी चलाई हैं औरतों को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए भी. और आप अगर उसके बारे में भी कुछ जानना चाहें तो मैं उसके बारे में भी आपको
1: बिल्कुल मैम
0: बता सकती हूँ.
1: फाइनेंशियली एम्पावर होने की बात की है तो एक मैम माँ होना हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सौभाग्य की बात है कि वो ईश्वर का दूसरा रूप हो जाती है माँ जब बन जाती है तो. लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें ये होती थी कि मैटर्निटी लीव लेंगी और वो उसमें फिर घर बैठना होगा, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि आप घर में हैं और आपको कुछ और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है. लेकिन ये जो पेड मैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट आया मैम, इसने बहुत हेल्प किया
0: बहुत ज्यादा. मैंने आपको ये कहा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वुमेन को पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने मद्देनजर रख के सरकार बना रही है, औरतों को बहुत फायदा हो रहा है उससे. अभी आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी, अब जो नई चीज जो मेरे को बड़ी इम्पैक्ट करी दैट इज द ड्रोन दीदी.
1: जी
0: आप इमेजिन कर सकते थे कि औरतें जो है वो ड्रोन्स बनाएंगी, ड्रोन्स चलाएंगी अपनी एग्रीकल्चर, अपने फार्म हाउसेस की और सब चीजों की, वो वहां पर जो है वो उसके स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं ड्रोन के जरिए. ये इतनी एम्पावरमेंट है कि आपने जो आम, जैसे आप गांव की औरतों की बात कर रही हैं, उनको आपने आकाश में उड़ा दिया है. तो ड्रोन्स के साथ जो ड्रोन दीदी स्कीम है, सब स्कीम्स ही बहुत अच्छी हैं, ये स्कीम जो है ये तो बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीम है. बाकी सबसे बड़ी जो चेंज आई है, मैं ये सोचती हूँ स्कीम्स तो पहले भी कुछ कुछ हुआ करती थी पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. अब ये हो गया है कि सरकार ने उसके स्टेप्स बना लिए हैं. अगर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देते हैं तो खाली पैसा ही नहीं देते, उसके बाद सरकार सोचती है कि अगर हमने फाइनेंशियल हेल्प करी है तो स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले हैं. जनधन जो आपकी वो स्कीम है उसमें जीरो से भी आप अकाउंट खोल सकते हो डायरेक्टली, देयर इज नो मिडल मैन. आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, वो डायरेक्ट आपका पैसा बैंक में आता है और देयर इज नो मिडल मैन. आप सीधा जाके बैंक से निकलवाइए. एक तो औरत जब ये बैंक में जाके विड्रॉ करती है, उसके हाथ में जब भी पैसा आता है, आई नो कि वो क्या फीलिंग होती है. जब मैं जॉब करती थी तभी तो चेक्स वगैरह नहीं, कैश ही मिला करता था. जब वो आके कैशियर हाथ में कैश पकड़ाते थे तो आपको इतनी एलिवेशन की फीलिंग होती है, आप इतना एम्पावर फील करते हो कि ये पैसा मेरा है, मेरा हक है इसके ऊपर, मुझे किसी ने ये दान नहीं दिया. पहले ये होता था कि उस टाइम में औरत की स्लेवली इसलिए भी थी कि हर चीज के लिए वो आदमी पर डिपेंडेंट थी. उसको 10 रुपए भी चाहिए तो आदमी का आगे हाथ फैलाती थी. कई बार वो हिचकिचा जाती थी, हेजिटेंट हो जाती थी कि मैं हर वक्त आदमी से क्यों मांगू. अभी ये जो बैंक का हो गया है, उसका इंडिपेंडेंट, उसके अकाउंट हो गए हैं, उसके नाम पे पैसे जमा है, उसको पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है. और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल ट्रेनिंग का रखा है. स्किल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, सारी डिजिटाइजेशन हो रही है कि आप क्या कर रहे हो और कहां कहां आपको हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. और ये जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, अगर हमने आपको पैसा दिया, आप लोगों को नहीं दे रहे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो आपका उसी में आ जाएगा जब आपकी वहां पर रिपोर्ट डिजिटाइजेशन में आएगी, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है सब, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कहां कहां फेलियर है. सो ये स्कीम्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिजिटाइजेशन है, मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है. तो बहुत थॉटफुली बड़ी इंटेलिजेंटली ये सारी स्कीम्स बनाई हैं जो कि औरतों की पोजीशन को बहुत ही ऊपर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर रही हैं, लड़कियों को एजुकेटेड कर रही हैं, लड़कियों को एम्पावर कर रही हैं, और ये सोसाइटी में अवेयरनेस आती है कि लड़कियां भी किसी से कम

0: नहीं है,
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम. और पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ज्यादा अकाउंटेबल हो रहा है. आपने जो अभी ड्रोन दीदी की बात की मैम, उसमें हम इमेजिन करके बहुत अच्छा लगता है कि गांव की एक लड़की या महिला वो ये फील करती है कि अब मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हूँ, मैं मॉडर्न टाइम्स में हूँ. तो पहले तो बस चौका चूल्हा करो यही बोल के उनको चुप करा दिया जाता था.
0: बड़ी हद है, थोड़े बहुत मतलब टीचिंग ट्रेन टीचर्स ट्रेनिंग करा जी. अब एवेन्यू सारे ओपन हो गए हैं, जैसे मैंने कहा पायलट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट सब लेडीज पायलट की फ्लाइट हुई, आर्मी में देखो जा रही है, वहां पर उनकी प्रमोशंस का वही हाल है जो मतलब जो बाकी जेंट्स का है. नहीं तो पहले था कि औरतें एक पोजीशन के बाद जो उनकी प्रमोशंस नहीं हो सकती, खाली डॉक्टर्स ही थी, पर अब ऐसी वो सारी जो चीजें बंदिशें खत्म कर दी. ऐसे लगता है मेरे को, कई बार ऐसा लगता है कि औरत आजाद होकर पंछी की तरह उड़ना शुरू हो गई आकाश में, इतनी ज्यादा फ्रीडम आ रही है. और चारों तरफ आप देखते हो औरतें, इवन जब 26 जनवरी को इस पर देखा ना कि ओनली वुमेन की जो ब्रिगेड जा रही थी, कितनी खुशी होती है कि इस मुल्क में औरतें कितनी एम्पावर हैं, कितनी कॉन्फिडेंट हो रही हैं, और कितनी खुशी फैल. औरत अगर पढ़ी लिखी है, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर अ वुमेन, यू एम्पावर द होल फैमिली. सो ये मुद्दा बहुत अच्छा है. पहले हम खाली आदमी पर कंसेंट्रेट करते थे, लड़कों की एजुकेशन, लड़कों की एम्पावरमेंट, लड़कों का करियर, अब वो चीज शिफ्ट होके लड़कियों पर भी आ गई है, जिससे समाज का, फैमिली का, क्या पूरे देश का सुधार हम देख भी रहे हैं कि लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंस से मूव करती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव. कल मैं पठानकोट से आ रही थी तो मैंने एयरपोर्ट पे लड़कियों को देखा, 6 लड़कियां वहां खड़ी थी, तो देखने में दे वर लुकिंग सो गुड एंड सो कॉन्फिडेंट. तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप स्पोर्ट्स के लिए आए थे? दे सेड नहीं मैडम, हम BSF हमने ज्वाइन करा ट्रेनिंग से. आई फेल्ट सो गुड. मैंने उनको बिल्कुल आशीर्वाद दिया, मैंने कहा मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा रही हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए अब ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई. सो दीज आर द स्टेप्स. वो हमको भी इतनी फीलिंग ऑफ एलिवेशन देते हैं क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा जहां औरतें पर्दे से बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी. लड़की पैदा होती थी तो घर में मातम छा जाता था कि लड़की आ गई और दहेज के कारण. अभी डॉरी के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं इसके खिलाफ. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे धीरे, क्या मैं तो कहती हूँ काफी कुछ हो गया है और आगे भी होता जाएगा. एक बार औरत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो पूरा देश ही आगे बढ़ेगा. बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छा. ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, आप एक एक गाड़ी के पीछे देखो, एक एक ट्रक के पीछे. सो दिस मीन्स दैट मैसेज इज गोइंग टू द विलेजेस, मतलब नीचे तक वो जो है मैसेज जा रहा है कि बेटी के खिलाफ नहीं बोलना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को एम्पावर करना है. तो दिस इज वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा.
1: आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया तो मैम, बहुत से स्टेट्स में हमने देखा कि जो पैट्रियार्कल सेटअप है, जो एक सिस्टम हमेशा से रहा है, उसमें अभी भी कुछ फादर्स हैं या घर के जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा कहीं एक डाउट रहता है या वो एक तरह का स्टिग्मा अभी भी है. तो वहां पर हमने देखा है कि जो माएं हैं, बहनें, वो आगे आती हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि नहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे और करियर में इनको अपनी तरह से ऑप्ट करने देंगे, फ्रीडम देंगे. तो ये भी एक माइंडसेट में चेंज जो हम देख रहे हैं,
0: बहुत चेंज.
1: आपने जनधन की बात की तो बड़ी क्यूट सी चीजें जानने सुनने को मैं मिलती रही कि वो महिलाएं जो घर में चावल के डिब्बे में पहले या छुपा छुपा के पैसे रखती थी, अब दे हैव देयर ओन अकाउंट्स और वहां जाके अपनी तरह से एक्सेस कर सकती हैं. और वो फिगर्स देख के जो हमें एक फील आता है उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और सेविंग करनी है.
0: बिल्कुल नहीं, दूसरा मनी को हैंडल करना. हाँ जी, दैट इटसेल्फ गिव्स यू सो मच पावर, नो कि मैं पैसे को हैंडल कर सकती हूँ, ये पैसा मेरा है. ये साइकोलॉजी है ना, ये शायद लोगों के लिए समझनी मुश्किल होगी, पर हम लेडीज को ये पता है कि इसका क्या इंपैक्ट होता है. औरतें कितने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं, एम्पावर्ड फील करती हैं, क्योंकि उसके हाथ में पैसा है और उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है. अल्टीमेटली वही जब मैंने जैसा से स्टार्ट करा था, इट अगेन टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ वुमेन. औरत को आपने इतनी इज्जत दे दी है कि वो हाथ नहीं फैला रही है, वो खुद कमा रही है, वो छोटे छोटे जो अपने काम भी करती है उससे भी, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, जैसे आपने पहले भी कहा मैटर्निटी लीव इंक्लूड कर दी इतनी ज्यादा, उसके बाद पेटर्निटी भी कर दी, तो इसलिए औरतों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. फैमिली में भी, लाइफ में, वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सेटल हो सकती हैं. पहले वो अच्छे से एजुकेशन लेंगी, एजुकेशन लेने में भी उनको कोई भी फिजिकल जो रुकावट है वो नहीं आती, क्योंकि सब कंफर्ट मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है. उसके बाद पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और जिंदगी के सारे एवेन्यू ओपन हैं उनके लिए. अभी आप देखो पेपर में तकरीबन

0: रोज ये खबर आएगी कि एक मजदूर है उसकी लड़की ने मेडिसिन ज्वाइन करी, उसकी लड़की ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। अभी कल मैं पढ़ रही थी कि एक वो डेली लेबरर थे, उनकी बेटी जो है स्पोर्ट्स में कहाँ आगे बढ़ गई है। सो ये बड़ी खुशी की बातें हैं। इसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा है। अब लड़की को ब्लेसिंग समझा जाता है, ये बेटी मेरी केयर करेगी। आगे ये होता था कि पेरेंट्स, इसके लड़का चाहिए कि लड़के, पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनको लास्ट राइट्स कौन करेगा। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तीन बेटियां हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसकी बेटियों ने लास्ट राइट्स करे, कोई दिमाग में आया ही नहीं कि बेटा नहीं है कौन करेगा, बिल्कुल नहीं। सो ये जो सोशली माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात।
1: अब बहुत देर से मैम बहुत हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो अब ये पैसे की बात चली है तो लखपति दीदी सुनने में बड़ा कैची लगता है अपने आप में, तो इसका अभी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भारत सरकार को जाता है, वर्तमान सरकार को। तो लखपति दीदी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: लखपति दीदी डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में दो बातें हैं कि औरत को डिग्निटी दो और उसको फ्रीडम दो और उसको कॉन्फिडेंस दो और उसको एम्पावर करो। ये जो लखपति दीदी, इसका भी यही है, क्योंकि ये काफी पुराना से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो चलते आ रहे हैं, औरतों के ग्रुप बन जाते हैं, वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करती हैं। अब इन्होंने बजाय कि औरतें अपनी किट्टी से 10 रुपए दें 20 रुपए दें, तो इन्होंने ये स्कीम बनाई है कि औरतों को वो गवर्नमेंट जो है 10,000 तक देगी, उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो नए नए अपने बिजनेस चलाएंगी, नई नई चीजें बनाएंगी, क्राफ्ट की बनाएंगी। जैसे हमारी औरतें हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा केपेबल है, उनमें आर्ट बहुत है। अब देखो ये जो पाम ट्रीज होते हैं उनके लीव से वो इतनी अच्छी टेबल मैट्स बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं, तो लेकिन पैसा कहाँ से आए, कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे करें? तो ये जो पैसा सारा आएगा, जैसे मैंने आपको विलेज की बात करी, उस औरत ने मुझे बताया, कल मैं उसको मिली थी, वो कहती कि मैडम हमारे गांव में बोली लगी जमीन के लिए, हम लोगों ने लखपति दीदी से जमीन खरीद के उसको जो है अब उसके ऊपर खेती करेंगे और वो जो खेती का पैसा आएगा वो हम सब बांटेंगे और उसके साथ देखो कितने एम्पावरमेंट होएगी। तो ये जो इनिशियली औरतों को ये प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है और मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपना क्राफ्ट कैसे स्टार्ट करूं, वो बंधन, वो रुकावट, वो चीज अब खत्म हो गई है। जब दिवाली आ रही है उसके लिए वो दिए बनाएंगी, कैंडल्स बनाएंगी और देखना लाखों में उसकी सेल हो गई। लखपति दीदी का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होने वाला है later on in the long run.
1: That's really nice, ma'am. हम मैम देखते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को केटर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा रहा हमेशा ही, जिसपे बात करने से भी लोग बचते थे, मतलब एक तरह से कि उसको टच नहीं करना है, इट वॉज अ काइंड ऑफ टबू एंड दिस थिंग। अभी हमने देखा कि उस पर तो बाकायदा ना सिर्फ बात हुई बल्कि सोल्यूशन के साथ हमारी गवर्नमेंट आई है।
0: उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया इसके बारे में।
1: जी,
0: इसके बारे में हम लोग भी बड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि जो वाइफ है उसको कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो वाइफ की जो ना तो एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है,
1: और अपने राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है,
0: मालूम भी नहीं, और वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। गुस्से में आके कई बार मियां बीवी के बीच में आपस में ऊंच नीच होती है, पर वो गुस्से में अगर आके वो बोल देता है कि तलाक तलाक तलाक, तो आपका रिलेशन टूट जाता है। और उसके बावजूद जो लड़की के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो उसको इनसिक्योरिटी है, बच्चों का क्या, बच्चे कहाँ पर जाएंगे, वो माँ के साथ जाएंगे, बाप के साथ? सो यू आर क्रिएटिंग ए वेरी इनसिक्योर सोसाइटी ऑल्सो। तो उसको
1: मैम आप इजाजत है, इसमें मैं एक थोड़ा सा एंगल जोड़ने की कोशिश करूं कि अब तक समस्या ये थी कि वो अगर उसको परेशानी है भी इस चीज से तो वो किससे बात करे, अपने मदर से बात करे, सिस्टर से बात करे, हस्बैंड से बात करे, इन लॉ से बात करे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि जब सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है, आपको मौका देती है बोलने का, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और सोल्यूशन के साथ आते हैं, आई थिंक ये अगर हम भारत की बात करते हैं आजादी के बाद से अब तक देखें तो कभी किसी ने छेड़ने का भी प्रयास नहीं किया इस मुद्दे को, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है।
0: सरकार का एक बहुत बोल्ड स्टेप था, उन्होंने ये कानून पास करके दिया कि ट्रिपल तलाक जो है ये ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें भी औरत का वही स्टेप, वही अल्टीमेटली उसकी सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी, उसका कंफर्ट लाइफ में उसको बेचारी को हो गया, और आदमियों को भी थोड़ा सा ये अलर्ट हो गए कि अगर हमने कोई गलत काम किया या अपने आप को इतना एम्पावर, अपने आप पावरफुल महसूस करा।

0: और औरत को हमने ऐसे हैरेस करने की कोशिश करी, तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर बाय द साइड ऑफ द वुमेन, लॉ जो है औरतों की तरफ में ही है।
1: जी, आप लॉ की बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें एक बात मन में और आती है, इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उसमें नारी अदालत जो है, आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टेप है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: नारी अदालत तो इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि औरत जो है ना नॉर्मली वो हेजिटेट करती है। एक तो कोर्ट में जाना एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, दूसरा औरत जाके अपने जो उसकी प्रॉब्लम है वो ओपनली कई बार एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए दूसरा ये है कि नारी अदालत में तो खाली नारी के केसेस हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोर्ट में इतने इतने केसेस इतने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये तो लिमिटेड केस होते हैं, इसका जो सोल्यूशन भी जल्दी निकलता है और नारी जो है वहां जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वहां पर जजेस भी लेडीज ही होती हैं। सो इसलिए वुमेन जो है दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप जो नारी अदालत वाला भी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: वन स्टॉप सेंटर
0: जी, वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी चीज है। मैं कहती हूँ जिसके दिमाग से भी निकली बहुत अच्छे से निकली है। मेरे को याद है वो अरुण जेटली वो इसके बहुत ही फेवर में थे। एक बार मुझे याद है हम उनको मिलने के लिए गए थे, तो उनका आइडिया था वन स्टॉप सेंटर का, तो उनके लिए मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था आप थोड़े टाइम में देखना पूरे देश में कितने वन स्टॉप सेंटर हो जाएंगे। उसके साथ फिर औरतों को इतनी कन्वीनियंस हो गई, अगर किसी औरत के साथ कोई मिसहैप होता था, कोई असॉल्ट होता था, रेप होता था, वो शिकायत करने जाती थी, उसको पहले पुलिस थाने में जाना पड़ता था, फिर चेकअप के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, फिर उसके बाद केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। अब एक ही छत के नीचे जब वो जाके अपनी कंप्लेंट किसी एनजीओ के साथ या कहाँ करती है, वन स्टॉप सेंटर में करती है, वहीं पर ही पुलिस कभी उसका केस एफआईआर लॉन्च करती है, वहीं पर ही उसको मेडिकल हेल्प भी मिल जाती है, तो वो जगह जगह उसको भटकना नहीं पड़ता। तो ये औरत के लिए उस हालत में जबकि वो बिल्कुल ही परेशानी की हालत में होती है, उस टाइम उसको ये सोल्यूशन देने, ये बहुत ही दूर तक दूरंदेशी की बात है कि वन स्टॉप सेंटर। मैं तो इसके फेवर में बहुत ज्यादा हूँ वन स्टॉप सेंटर, और उसके बाद जो इनके काम होते हैं वन स्टॉप सेंटर में, रोज दिन ये डाटा जो है भेजा जाता है हेड ऑफिस में, कितने केसेस आए, कितने केसेस जो है अपने डील करे, कितने आपके सक्सेसफुल हुए, और जो वन स्टॉप सेंटर उनकी अकाउंटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डेटा के कारण अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो आगे क्या होता था, जैसे मैंने कहा कानून पहले भी थे पर कानून बना एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी उसका, क्योंकि डेटा जो है हर दिन सुबह शाम चलता है, तो उसके कारण आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी बहुत, आप क्या कर रहे हो औरतों के लिए, कितने केसेस कर रहे हो, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ये नहीं कि औरत आई वन स्टॉप सेंटर में या आई उसमें डिस्ट्रिक्ट होम में जिसमें शक्ति सदन हम अब नाम देते हैं, आई तो आपने बॉर्डर ही नहीं करा, नो, आपको जवाब देना पड़ता है हर दिन कि कितने केसेस आए, कितने आपने सॉल्व करे। मेरे को ये चीज इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगती है जो अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो डाटा है वो तैयार होता है और वो जो ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल तक वो सर्कुलेट होता है। इसलिए इम्पैक्ट तभी कानून का होता है जब भी कानून की जो अकाउंटेबिलिटी हो। अगर आपने कानून बना दिया उसको भूल गए, किताबों में आपने लिख दिया हमने ये कानून बनाया लेकिन कानून की आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है। तो इस सरकार की सबसे सराहनीय सबसे ज्यादा तारीफ वाली ये चीज है कि इन्होंने हर चीज का डाटा तैयार, आप गूगल में जाइए ऑन करिए कंप्यूटर, आपको हर चीज का डाटा मिल जाएगा कि कितने केसेस वन स्टॉप सेंटर में हुए, कितने केसेस जुडिशरी में गए, कितने केसेस नारी अदालत में गए। एक क्लिक करने से आपको सारे परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड।
1: हम डिजिटल भारत की बात बहुत आती है और अभी आपने भी जिक्र किया डिजिटाइजेशन को लेके, हमें लगता है यूपीआई को लेके भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि इसका जो अभी यूज हो रहा है और

0: में महिलाओं को जो पहले कैश कैरी करना, छुपाना और ये सब चीजें समस्याएं आती थी, वो भी नहीं है कि वो फोन कैरी करती हैं और कहीं भी जाके पेमेंट कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोटिस में नहीं आ पाती, लेकिन बेनिफिट इनका इतना ज्यादा है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो सबके लिए बहुत फायदे की बात है, स्पेशली वुमेन फोक की अगर हम बात करें। शी बॉक्स पोर्टल जो है उसके बारे में प्लीज अगर आप बताएं।
1: हाँ, शी बॉक्स पोर्टल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हम औरत की सेफ्टी का घर में बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, वहां पर वर्क प्लेस में भी इसकी बात करनी बहुत जरूरी है
0: जी
1: कि औरत जो है जब वर्क प्लेस में जाती है तो वहां पर उसकी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ, सेफ्टी के साथ एफिशिएंटली अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो उसके लिए हमारा 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, जेएस वर्मा गाइडलाइंस, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक 2013 में पॉश एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पर लड़कियों का क्या होता है, कई बार उनको समझ नहीं आती वेयर टू गो, हाउ टू मेक देयर कंप्लेन, अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही, क्योंकि इफ ए वुमेन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट वर्क प्लेस तो उसकी परफॉर्मेंस का इंपैक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस का इंपैक्ट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो शी पोर्टल जो है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि चाहे ये कंपल्सरी है, इफ यू डोंट हैव दिस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो आपको 50,000 का फाइन होता है। तो लेकिन कई जगह ऐसे है, फिर भी कई छोटी छोटी कंपनीज या कई छोटी छोटी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने ये आईसीसी नहीं इंट्रोड्यूस करी थी। हालांकि कानून है कि 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी बहुत जरूरी है। तो कई जगह अभी भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अगर कोई लड़की हैरेस फील करती है और उसकी कमेटी नहीं है तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री में वहां पर अपनी कंप्लेंट को दायर करवा सकती है। इस पोर्टल का ये फायदा है, वो ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड करो, और हर एक जो वर्किंग प्लेस है उनके लिए कंपल्सरी है कि शी पोर्टल को आपने डाउनलोड करना ही है। तो लड़की डायरेक्टली करती है, जैसे वो डायरेक्टली करती है इमिडिएटली मिनिस्ट्री उस प्लेस ऑफ वर्क को कॉन्टेक्ट करती है कि आपके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं है, और वो मॉनिटर करती है उस लड़की की फिर शिकायत को हैंडल करने के लिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है। तो उससे एक तो वो जो कंपनी है जहां पर वो लड़की काम कर रही है उनके ऊपर मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो जाता है, दूसरा वो जो लड़की है उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है, एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज ट्राई टू क्रिएट सेफ प्लेस फॉर द वर्किंग वुमेन ऑल्सो एट द वर्क प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट ये स्टेप है जो शी बॉक्स वाला है।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक मुद्दा जिस पे बहुत बहुत बात बहुत वर्षों से होते आ रही है, कहां पहुंच रहे हैं ये देखना अभी बाकी है, दैट इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल।
1: अब वुमेन के रिजर्वेशन बिल का तपस्या जी, मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी है, और आप सोशल चेंज के लिए बोलते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि माइंडसेट लोगों के कैसे चेंज हुए। आज के दिन में देखो, इस मुद्दे को यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर दिया गया, ये कानून पास हो गया 33%। उसमें क्या है कि औरत को एम्पावर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि शी शुड बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड। एक बार औरत पॉलिटिकली एम्पावर हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। तो 33% के साथ क्या होगा, जब आपने वो सीट वुमेन के लिए करी है रिजर्व और 33% वुमेन जब उसमें बैठेंगी पार्लियामेंट में तो वो अपने आप में भी एक फोर्स कहलाएंगी। वो माइंडसेट चेंज होगा कि औरतें भी उतनी ही कैपेबल हैं, बल्कि ज्यादा हैं कि जितने हम कैपेबल हैं। औरत तो मल्टीटास्किंग करती है, घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, समाज भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, उसके अंदर तो मेरे को लगता है गॉड ने बिल्कुल फ्री टाइम में बैठ के उसको बनाया है, इंटेलिजेंस भी दी है, इमोशंस भी दी है, फिजिकल पावर भी दी है, मेंटल पावर भी दी है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है कि परमात्मा ने भी यही सोचा कि औरत के अंदर ही पावर है कि शी कैन प्रोड्यूस ए चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड को प्रोड्यूस करना इज नॉट स्मॉल थिंग। आपको 9 months उसको कैरी करना है बॉडी में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोड्यूस करने का, उसके ब्रिंगिंग अप करने पर मैं तो बहुत मानती हूँ। इसलिए औरत जो है शी इज, आई डोंट वांट टू कंपेयर देम, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हर हिसाब से। वो घर घर में कोई, मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम आती है कुछ आते, इट्स ऑलवेज द वुमेन हु सॉल्व द प्रॉब्लम. पर अब पोलिटिकल एम्पावरमेंट आपने दी है, तो मैं गवर्नमेंट को ये अब रिक्वेस्ट करूंगी, जहां आपने इतनी स्कीम्स चलाई हैं वहां पर

0: विमेन की लीडरशिप की ट्रेनिंग का भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। विमेन को ये पता चले कि अगर उसने इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मींस, कैसे वो कर सकती है, और जब वो पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको को तैयार करना, उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए कि हम कहां से कहां चल के आए, ताकि जब वो पार्लियामेंट में आती हैं, जब उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो दे शुड शो देयर कैपेबिलिटी उस फील्ड में भी दिखाएं जहां हर फील्ड में उन्होंने दिखाई है, कि आपने उनको इंजीनियर बनाया, हाउसवाइफ बनाया, मदर बनाया।
1: यहीं पर मैं एक बात आपसे अगर पूछूं, जो बात आप कह रही हैं, यहीं थोड़ा अगर आपसे समझें कि हम जब मेन फोक की बात करते हैं, उनको तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो महिलाओं के लिए फिर एक नई चीज आ जाती है कि अगर आपको आना है तो ये करके आना होगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूं, जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें बात आती है कि अगर महिलाओं में वाकई इतनी कैपेबिलिटीज हैं तो उनको मैंडेट मिलेगा, खुदा जाए वो रिजर्वेशन क्यों चाहिए। और एक बात और भी आती है मैम उसमें, ये कि जीत कर तो वो आ जाती हैं, सीट पर बैठ भी जाती है, लेकिन पीछे से रन कर रहे होते हैं उनके घर के जो मेल पर्सन होते हैं, तो बहुत सारी प्ली काउंटर इस तरह के क्वेश्चन और डाउट्स हैं, ये सब बहुत बार उठे हैं सवाल इस तरह के।
0: हाँ, जो था ना ये पति पंचायत, ये वर्ड भी कॉइन हुआ था, उसका सिर्फ रीजन यही है, आपने वहां पर रिजर्वेशन तो कर दी पर आपने औरतों को ट्रेन नहीं करा, आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने उनको पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया, तभी मैं ये बात कहती, दैट्स वाई द मैन दे यूज टू इंटरफियर इन एवरीथिंग, दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, पर हमें उसकी रेमेडी, ये रेमेडी यही है कि औरत को पूरी लीडरशिप की ट्रेनिंग दो। अब कहते हैं ना आदमी अपने आप कर लेते हैं, आदमी अपने आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आदमी के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं है, जैसे हम औरतों को पूरा मापते तोलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एज हाउसवाइफ कैसी है, एज मदर कैसी है, एज पॉलिटिकल लीडर कैसी है, वैसे हम आदमियों के मापदंड नहीं करते हैं। वो इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन उनको आपने ये नहीं बताया कि आपका पार्लियामेंट में जाके रोल क्या है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ट्रेनिंग औरतों को देनी, चाहे वो कॉलेजेस में स्टार्ट करें, चाहे वो एनजीओज इंट्रोड्यूस करें, जहां पर आप बाकी ट्रेनिंग्स देते हैं वहां पर ये भी एक आपका सिलेबस में होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, कि औरत को भी एम्पावर करो, और दूसरा औरत में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आपने उसको कुर्सी पर बिठाया, जैसे वो घर को हैंडल करती है, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वैसे वो ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी, पर औरत की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो, उसको भी आगे आने दो, उसको भी इक्वल राइट दो, इक्वल स्टेटस दो, डिग्निटी दो, तो औरत भी देखो कहां के कहां पहुंच जाएगी आपकी, देयर इज नो डाउट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स।
1: बिल्कुल बल्कि मैम मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगी, जो हमने सोसाइटी में देखा है जनरली, वो ये कि आपको क्वेश्चन किया आता है आपकी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को, आपकी शार्पनेस को, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। अब जैसा कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अवेयरनेस है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आपने मैम एनजीओ की बात की अभी, तो हम थोड़ा सा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको, बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
0: हाँ, हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द सेंटनरी ऑन 8th of January, क्योंकि ARWC ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसके 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं अभी 27 में, क्योंकि ये स्टार्ट हुई थी 1927 में, और बड़ी ही रिच हिस्ट्री है इसकी। ये स्टार्ट हुई एक छोटी सी बात से, एक बंगाल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने औरतों को ये चीज कही कि तुम लोग कब तक आदमियों के कंट्रोल में रहोगे, तुम्हारी एजुकेशन में कब तक मेन जो है वो सिलेबस बनाते रहेंगे, आगे बढ़ो, बताओ आपको क्या चाहिए, और हम आपकी तब तक मदद करते रहेंगे जब तक आपका सब कुछ अचीव नहीं हो जाएगा। तभी फिर एक मैगजीन था चेन्नई में, WIA का ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हमारा पार्ट है वो, उन्होंने उस मैगजीन में ये खबर को निकाला, एंड देयर वाज वन आयरिश लेडी, माइग्रेट कजन, हर हस्बैंड वाज ए प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेजेस, वो इंडिया में सेटल हुई हुई थी, उसने जब ये पढ़ा तो उसने चारों तरफ ये फैलाया कि औरतों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सबसे पहली जो औरतें, पूरे देश से औरतें जो थी वहां पर आई, पूना में फर्गुसन कॉलेज में पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में गायकवाड़ की महारानी थी चिमनाबाई, जो बहुत ही बड़ी वेमेन एम्पावरमेंट वाली थी, उसने दशहरे के उसमें अपना पर्दा पब्लिकली निकाल दिया था कि पर्दा जो है वो औरत की हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को इंपैक्ट करता है, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उस पहली मीटिंग में ही 7 रेजोल्यूशंस पास किए।

0: गए, और उस टाइम बच्चियों की शादी 4 4 साल 5 5 साल की हो जाती थी, और एजुकेशन लेवल वाज 1% फॉर गर्ल्स एंड 1 point something फॉर बॉयज. तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन लड़कियों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि देर इज चाइल्ड मैरिज. सो आवाज़ उठाई गई कि 14 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने 2.5 साल के अंदर अंदर ये कानून बनवाया. उसके बाद ये चलती रही. फिर उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी बनाया. उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने कहा अगर शादी नहीं करेंगे लड़कियों को क्या करेंगे, उन्होंने कहा एजुकेशन. दिस इज हाउ. फिर तीन हमारे एम है IWC के, एजुकेशन थ्रू एजुकेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन एंड देन एम्पावरमेंट. हम वी आर सेक्युलर एंड वी आर नॉन पॉलिटिकल. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले कि औरतें इतनी दूर तक सोच सकती थी कि लड़कियों की एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए. लड़कियों को फाइन आर्ट भी सिखाओ, होम साइंस भी सिखाओ, और जो विडोज हैं उनको आगे कैसे लाना है. उन्होंने विडोज के लिए सेंटर्स बनवाए, वहां वो रहेंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे ताकि अपने पैरों पर खड़ी
1: जी.
0: आज से 100 साल पहले तो हमारे सबसे मशहूर जो है वो हंसा मेहता, जब भी वो यूएन में गई रिप्रेजेंट करने हिंदुस्तान को, तो वहां पर ये ह्यूमन राइट्स कमेटी में ये आया कि औरतें और आदमी बराबर हैं, ऑल मेन आर इक्वल. शी स्टूड अप, शी सेड नो, व्हाई शुड वी से मेन, व्हाई यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू मेन, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. उसके बाद सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू के बारे में तो सब जानते हैं. उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर थी. उन्होंने अपना जो घर था, उन्होंने एंड में अपना जो राजकुमारी उनका था ये पोजीशन, उसको उन्होंने त्याग दिया था. उन्होंने कहा मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूं, मैं खाली, मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं खाली अमृत कौर, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सिस की हालत, काम करने के बाद इनको रेस्ट चाहिए, इनको रिलैक्सेशन चाहिए. उन्होंने मसूरी में उनका जो बंगला था वो उनको डोनेट कर दिया कि नर्सिस जो है छुट्टी लेके वहां जाएं फैमिली के साथ, रिलैक्स करें ताकि रिजुविनेट हो जाएं और आके वो काम करें. और फंडामेंटल राइट्स को जब बनाया गया उसकी कमेटी में राजकुमारी अमृत कौर और रेणुकौर रहे. और जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हो वो उनके द्वारा ही कॉइन किया गया था. तो ये हमारा मुल्क की फ्रीडम में, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा रोल है. पूरे देश में हमारी 500 ब्रांचेस हैं. फिर साल में 2 conferences होती हैं जहां सब मिलके हम अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर करते हैं. और हमारे एजुकेशन ट्रस्ट है जो लड़कियां एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं और उनके पास फंड्स नहीं है, तो एजुकेशन ट्रस्ट से हम उनको हेल्प करते हैं. दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा डे केयर सेंटर है. जैसे आजकल लड़कियां जॉब करने चली जाती हैं, मदर इन लॉ या मदर्स अकेली रह जाती हैं, तो सुबह 9 बजे हम सेंटर पर उनको बुला लेते हैं और वहां आके सारी सेम एज की होती हैं, उनको कुछ ना कुछ जैसे दिए की बत्तियां बनाना, जो मैट्स होती हैं वो बनाने सिखाना, खाना दोपहर का उनको दिया जाता है, टीवी के प्रोग्राम चलते हैं, और शाम को 5 बजे वो घर चली जाती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम विलेजेस अडॉप्ट करके लोगों की मेडिकल केयर करते हैं, जैसे अनीमिया टेस्ट करते हैं, मेडिसिन दी जाती है, आईसेट टेस्ट होती है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल के जो बड़े रिमोट विलेजेस हैं वहां पर लोगों की हेल्थ की थोड़ी अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं. और बाकी हर लेवल में, हर फील्ड में, एनवायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन है. यूएन में भी हर साल हम विमेन इश्यू पर पार्टिसिपेट करके वहां पर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं. कमाल की बात यह है कि सब वॉलंटरी काम करते
1: वाह वाह जी.
0: हम यही इंजॉय करते हैं कि हम आपस में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है. तो अभी हम उस खुशी में स्टार्ट कर रहे हैं, 22 नवंबर को वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगेंस्ट वायलेंस है, उसमें हम एक वैकाथॉन कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफी सीनियर मेंबर्स हैं. नाम तो उसका मैराथन था पर हमने वैकाथॉन इसलिए करा कि काफी मेंबर शायद भाग नहीं पाएंगे
1: जी.
0: तो वो हम कर रहे हैं पूरे देश में, पैन इंडिया. टी शर्ट्स हम उनको दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमने सेंटेनरी का लोगो भी बनाया है, हमारा पुराना IWC का लोगो भी है, और वो लोग जो हैं वो एक تین کلو میٹر چار کلو میٹر جو بھی جس کو کنوینئنٹ ہے واک کر کے، وی وانٹ ٹو اسپریڈ دس میسج، پلیز اسٹاپ وائلنس اگینسٹ وومین.

0: ये नाइस
1: तो
0: वन
1: ये हमारा है।
0: बहुत बढ़िया।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अभी आपने मैम बात की तो बस चलते चलते आपसे ये और समझे, आप बहुत सी कंट्रीज में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया और अपनी बात भी रखी है। हम इसराइल की बात करें, काठमांडू है, आई थिंक आप पेरिस भी गए हैं।
1: पेरिस तो मैं 6 बार गई हूँ।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मैं जुड़ी हुई और वहां पर वो मेरे को बुलाते थे, दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इंडिया। और जेएस वर्मा की कमेटी के बाद जो अमेंडमेंट हुई लॉज में उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर उनका मेन इम्पॉर्टेंट हुआ करता था सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी में मेरी उसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा, दैट इज माय स्पेशलाइजेशन, कि उसका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर क्या होता है और कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो मेरे को उसके लिए भी बुलाते थे। फिर एक बार मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर उनको बताया था कि हमारे कानून क्या हैं और हमारे जो पुराने सिस्टम अपने चले हुए वो क्या हैं, वो हमारी बिलीफ क्या हैं, वो सारा कंपैरिजन मैंने उनको बताया था। फिर मेरे को वहाँ के जो मेयर थी पेरिस की, उन्होंने इनवाइट किया था। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे,
0: क्या बात,
1: उनके सामने फिर हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी। उनके सामने फिर मैंने ये प्रेजेंटेशन करी थी कि आज कैसे हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ रहा है, औरतों की हालत कैसे ठीक हो रही है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आफ्टर जेएस वर्मास वो स्ट्रिक्ट लॉस। उन्होंने उसके लिए मुझे इनवाइट करा था तो मैंने उसके ऊपर बोला था। इसराइल में भी ये था, इसराइल में मैंने जो अभी शक्ति सदन है उसमें मैंने 7 साल काम किया है
0: जी।
1: तो उन्होंने मेरे को इसलिए बुलाया था कि आप औरतों को एम्पावरमेंट के लिए उनको आप क्या क्या काम करती हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके बारे में मैं इसराइल गई थी। रशिया में भी वहाँ पर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी। और अभी नेपाल में तो हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर में गई थी जब आई वाज सेक्रेटरी, उस टाइम वहाँ पर वो एक वुमेन का ग्रुप बना है। एशियन जो कंट्रीज हैं उनका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे। उसमें फिर हमने वहां जाके तो सरोगेसी के बारे में सबके साथ शेयर करा था कि उसका औरत पर क्या इम्पैक्ट है। तो वो जो नेपाल की प्रेसिडेंट थी, तभी लेडी प्रेसिडेंट थी, शी इनवाइटेड अस एट हर प्लेस ऑल्सो। सो सबसे जब मिलते हैं दूसरे कंट्रीज का जब पता चले जाए, इसराइल में गए, इसराइल में 15 दिन के लिए उन्होंने हमें रखा और सब कंट्रीज से वहां पर लोग आए थे, मैंने फिलीपींस तक के लोग आए थे। सभी इंटरेक्शन होती है, देन यू रियलाइज के बाकी कंट्रीज की क्या हालत है और आपके कंट्री के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। फिर आप शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क में ये होता है। जब दूसरे मुल्क से आप सीख के आते हैं कि ये होता है, दैट मैसेज यू ब्रिंग टू योर ओन कंट्री एंड यू कन्वे कि ये चीज वहां सक्सेसफुल हो रही है, सेम थिंग वी शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस।
0: बिल्कुल जी।
1: फिर उसके बेसिस पर हम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में सेमिनार करते हैं अपने लोगों को बुला के, और हमारा एक मैगजीन निकलता है क्वार्टरली रोशनी, उसमें हम आर्टिकल मैं अक्सर लिखती हूँ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखती हूँ और कैसे औरतों को एम्पावर किया जा सकता है, कैसे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म, कुछ उसके फिगर देते हैं, कुछ हिस्ट्री भी देते हैं, सो दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो उसको फिर वहां पर हम यूज करते हैं। सो जहां भी मेरा हो सकता है, मैं 3-4 बार न्यूयॉर्क भी गई हूँ वहां जाके। और अभी कोरोना के दिनों में जब हम वहां नहीं जा सके तो हमने ऑनलाइन ये मैंने करा था द कंडीशन ऑफ वुमेन, जो वर्किंग वुमेन थी कोरोना के टाइम में उनकी क्या हालत हुई, क्योंकि मोस्टली घर से कर रही थी और अदरवाइज व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इनलॉज, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो औरत को कैसे डबल रोल प्ले करना पड़ा और घरों में कितनी वायलेंस हुई। फिर मैंने उस वायलेंस की पूरी रिपोर्ट बना के भी यूएन में भेजी थी। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो मीटिंग्स होती हैं जहां पर वो एनजीओस को बुलाते हैं कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि गवर्नमेंट को वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने 3 बार उस पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पार्टिसिपेट करा है जहां पर मैंने रिकमेंडेशन दी है अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
0: सो ऑल इन ऑल मैम हम ये कह सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो उसमें कि जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो

0: जिस देश में फाइनेंस मिनिस्टर महिला हो, जिस देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं वो महिला हो, तो हमें लगता है संदेश सबके लिए है कि आम जन परिवार इस बात को समझें कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं,
1: बिल्कुल ठीक,
0: और वो अगर सशक्त होंगी तो उसका डेफिनेटली जो लाभ है वो आपको भी मिलेगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं। मैम, चलते चलते आप कुछ अगर संदेश देना चाहें।
1: मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने आगे भी ये कहा कि अगर पहले हम कहते हैं ना एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर अ वुमेन एंड यू एम्पावर द होल कंट्री। क्योंकि औरत जो है वो पूरे हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वो है जो औरत है। औरत ही सब को चलाती है, घर भी चलाती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को जो वो ये कहा जाता है कि मैं जो कैरिंग ए चाइल्ड, आपके जो उस टाइम वैल्यूज और आइडियाज हैं वो आपके बच्चों में जाएंगे। तो आप बच्चों को जब पालते पोसते हैं, अच्छे से पालते हैं, उसको वैल्यूज देते हैं, अगर औरत पढ़ी लिखी होएगी, समझदार होएगी, हिस्ट्री के बारे में पता होगा, सोसाइटी के बारे में पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो शी विल ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन ऑल्सो इन दैट वे एंड विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए वेरी केपेबल एंड इंटेलिजेंट सोसाइटी ऑल्सो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत कौर मैम, आप सच में यहाँ पर आए, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। हम इतना इंग्रॉस्ड आपकी बातचीत में हो गए कि टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो जहन से रह गई, और बहुत सी बातें अभी आपसे हमें और करनी थी, लेकिन आप जानती हैं थोड़ा वक्त की भी अपनी सीमा होती है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तपस्या जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का

0: मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तर बतर रहा। सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगातार बनी रही। अपने पांचवे अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एंसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो चौथे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर वन थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलन भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर पांचवें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। तीन पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकटेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने तीन और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, two medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final, where he went down to Malaysia's Ian Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal.

0: ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गयी। वही मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गई।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स येओन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin JS and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last 8. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के

0: ये मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड वन में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी नम्बे पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अब

0: चीन पहले, जापान दूसरे, तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती, और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
1: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे, और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
0: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। Then in the archery range, individual competitions will start. We will have our eyes on men and women from both recurve and compound archery. In athletics, Gulveer Singh and Yunus Shah will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murali Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Badha Daud mein 400 meter mein purushon mein Tamil सरन, तो महिलाओं में वित्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 meter की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल आल्सो फीचर इन द विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 meter स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।